0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम बांग्लादेश बेतार ढाका सकाल 6টা आज शनिवार तेसरा श्रावण 1433 बंगाब्द तेसरा साफर 1448 हिजरी 18 जुलाई 2026 ख्रीष्टाब्द
1: शुभ सकाल सुंदर एक सकाले श्रोतादेर प्रति रइल आमादेर प्राण ढाला भालोबासा अनेक अनेक प्रीति और शुभेच्छा शुरू होच्छे आमादेर आजकेर अधिवेशन ए अनुष्ठान प्रचार होच्छे ढाका क मीडियम वेव 693 किलोहर्ट्ज एफएम 90 मेगाहर्ट्ज एफएम 106 मेगाहर्ट्ज एवं एफएम 102 मेगाहर्ट्ज